0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out, or a message for someone special, send your name, space, your song name, and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
2: बाहर की गर्मी को एसी कूल करता है और हैवी नील्स के बाद पेट को कंफर्ट देता है डाबर पुदीन हरा योर अंदर का एसी विद आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर सूदिंग

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 96.2, The Beat of Bollywood.
1: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। Consult your doctor or pharmacist before consumption.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:09।
1: बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 7:27 on the clock. थोड़ा नरम नरम, थोड़ा गरम गरम. बेटा जी, आज weather is quite okay, not too bad. 33 degrees Celsius right now. Humidity at 47%. Winds blowing at 14 kilometers per hour. Highs of 38, lows of 32 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 8:08।
1: Bollywood.

0: बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Good morning, it's 8:17 on the clock, 35 degrees Celsius, mostly sunny start to this Monday morning, humidity at just 37%, winds blowing at 11 kilometers per hour, highs of 38, lows of 32 degrees Celsius.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets, spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ie.

0: स्टिल सम टाइम टू गो बिफोर शाहरुख खान सेज, तो फिर आओ यार, आओ घर पे आओ कभी। मन्नत में काफी मरम्मत रेनोवेशन चल रही है।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बट व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? सो देयर इज अ वेरी लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर इन मुंबई, जिन्होंने रिवील किया अ फ्यू फ्लोर्स, अ न्यू फ्यू फ्लोर्स आर गोना कम अप इन मन्नत। सो या, न्यूज फॉर ऑल अस शाहरुख खान फैंस की यार, चल तो रहा है बहुत टाइम से, लेकिन क्या चल रहा है, कौन सी मरम्मत हो रही है ये पता नहीं था। तो या कुछ फ्लोर्स, अब क्या चलेगा इन फ्लोर्स पे, आई डोंट नो, मे बी इज लाइक गोना मेक अ होम स्टूडियो आउट देयर समथिंग लाइक दैट। आई हैव नो आइडियाज। When I get to know, I'll let you know. But what I do know is that in the latest season of The Big Check-In, we are heading out to Germany.
1: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: All right, let's do this one last time this morning. आज सुबह का आखिरी बोर्डिंग कॉल है। अगर if you want to get your name into the draw, अगर आप you want to get one step closer to heading out for this amazing trip to Germany with Team Big, all you got to do is type out Big Check-In space your name. Type कीजिए Big Check-In space अपना नाम and send that as a WhatsApp to 0543091062. That's 0543091062. We're going to be playing the Find the German Dish. बहुत ही simple contest है. Find the German Dish is the name of the game for this entire week. So to play that, get your name into the draw. Big Check-In space your name to 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 9:07।
1: Bollywood.

0: you're feeling that ke life thodi si aaj slow motion mein chal rahi hai. Of course you can blame the back to school Monday today.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Right now it is time to play that contest jiska har kisi ko intezar rehta hai.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG, travel partner AFC Holidays, exclusively on Big 106.2.
0: Aaj ke hamare contestant, I've got Amit Mathrani with me on the phone line. Good morning, Amit. How are you doing?
2: Good morning. I'm fine. How are you?
0: Oh, kaam pe pahunch gaye. Puspus karke baat karni padegi.
2: नहीं ऐसा नहीं है, हाँ. खाली आवाज थोड़ी दबी हुई है, दैट्स इट.
0: दबी हुई है मतलब थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है या क्या सीन क्या है?
2: नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं है.
0: हाँ. आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस कॉन्टेस्ट एंड गेटिंग योर नेम इनटू द ड्रॉ?
2: यस.
0: आज बैक टू स्कूल का क्या माहौल था? आई मीन यू हैव किड्स एंड आर दे इन स्कूल? व्हाट इज द सीन लाइक?
2: यस, आई हैव अ किड. एक है जो स्कूल जाता है, ही स्टडीज इन शारजा. और दूसरी अगर मैं बताऊंगा कहाँ पर है तो आप मुझे कॉम्पिटिशन खेलने नहीं देंगे.
0: क्यों, ऐसा क्या है भाई? बंद करो म्यूजिक प्लीज. प्लीज स्टॉप दिस जर्मन म्यूजिक प्लीज. आई डोंट वॉन्ट एनी जर्मन म्यूजिक प्लीज. आपने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है कि औरों को भी मौका दो?
2: हाँ बिल्कुल.
0: लेकिन आज नहीं देंगे.
2: मुझे तो मौका चाहिए.
0: मौका चाहिए, लेकिन आप वहाँ पे चले गए. सपोजिंग आप वहाँ पे चले गए तो आर यू गोना स्टिक टू आवर शेड्यूल कि वहाँ पे साइट सीइंग करोगे या फिर वहाँ पर बेटी से मिलने जाओगे?
2: नहीं, पहले आप लोग, बाद में वो.
0: क्या बात कर रहे हो यार अमित, यार ये थोड़ा बिलीवेबल झूठ बोला करो यार.
2: नहीं ना ना ना, ना इसके तो कंपटीशन पार्टिसिपेट किया आपने सर पता करने के लिए.
0: चलो सही है यार, वी
2: वहां पे तो जाते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
0: अच्छा, वी विल नॉट डिस्क्रिमिनेट on the basis of your visa status, but you know what we will do is throw a challenge at you. It's hardly a challenge because aap to matlab Germany ke chappe chappe se waqif hain. To main aapko teen dish ke naam batane wala hu. This contest brand new for this week. It's called Find the German Dish. All right, so you'll have 10 seconds and I'll give you three dishes. 10 second ke andar aapko batana hai ki in teen mein se kaun si is a German dish and the rest of the two are international dishes but not German. Okay.
2: Okay.
0: Are you ready?
2: To just say the name or I can say 1, 2, 3.
0: आज जैसा भी यार, जैसा भी.
2: ठीक है.
0: इतना टेक्निकल क्या है? क्या काम करते हो यार आप?
2: I'm into hospitality industry.
0: Hospitality industry. चलो सही है.
2: जी.
0: Okay. So are you ready, Amit?
2: Yeah.
0: How much do you know your German food? How many times have you been to Germany to visit your daughter?
2: Just basically twice.
0: Twice? Not bad. अच्छा, just like it है भाई. चलो सही है. So should I start your time? Are you ready?
2: Sure.
0: Your time starts now. Your options are currywurst, poutine, and hot dog.
2: The first one.
0: Currywurst, poutine, or hot dog? You're saying the first one. Are you sure?
2: First one.
0: Have you had it?
2: Hot dog to me. Hot dog to me. Believe me, I'm a vegetarian guy. Second one.
0: Are you sure? Because you know, hot dog ke andar hota hai ek Frankfurter, and Frankfurt is a city in Germany.
2: Sorry, hot dogs wahan pe bahut chalte hain. Wahan pe ye Sapphire to supermarket over there. There are, yes. Sorry, the third one.
0: Amit, I was just confusing you. Your answer was correct the first time over. It is curry worst. Curry ka pata nahi, but I am the worst when it comes to confusing people. Or should I say best? But curry was correct. Hot dog is a US dish. Frankfurter is definitely German. But when you say hot dog, it's a US dish. Poutine is Canadian, and you were absolutely right in saying currywurst is a German. Yeah, the first one. So congratulations, your name goes into the draw.
2: Thank you so much.
0: And bas kuch din aur aapko apne fingers crossed rakhne. Ask your daughter to also keep her fingers crossed in Berlin. That agar aapka naam draw mein se nikal gaya, you'll be heading out to Berlin with Team Big. How does it feel right now? Describe your feelings.
2: It really feels nice. Thank you so much for giving me the opportunity.
0: Yeah.
2: And after a long time, I'm basically participating in such kind of competition.
0: So are you going to tell your daughter or is it going to be a surprise or what?
2: No, basically she's right now over here, break pe aayi hai, but I won't tell anything.
0: चलो बढ़िया, जब नंबर लग जाए तभी बताना. एक्चुअली जस्ट सरप्राइज है, ओके, जस्ट धमक जाना वहाँ पे.
2: नहीं, क्यों करना है वहाँ पे सरप्राइज, आई एम श्योर.
0: चलो अमित यार, थैंक यू सो मच, मेनी कांग्रेचुलेशंस. वी ऑल यू नो आर होपिंग दैट योर नेम कम्स आउट ऑफ द ड्रॉ एंड हैव अ वंडरफुल मंडे एज़ वेल.
2: श्योर, थैंक यू सो मच.
0: टेक केयर, दैट्स अमित, हमारे आज के ड्रॉ एंट्रेंट हैं, आप भी अमित की तरह मैसेज करो, इट्स एज सिंपल एज दैट यार, दिस एंटायर वीक वी गोना बी प्लेइंग फाइंड द जर्मन डिश, सो बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम, दैट्स व्हाट यू गो व्हाट्सएप, बिग चेक इन स्पेस देकर अपना नाम, सेंड इट एज अ व्हाट्सएप टू 0543091062, द बिग चेक इन टू जर्मनी.
1: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ। अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए, ताकि जस्ट सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू। 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं। एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स। आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae।
1: School's starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back to school rent a car offer on Self Drive. Self Drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what we need for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties.

0: 14 दिन ऑफ एनुअल लीव अगर आपके पास बचे हुए हैं, हाउ यू कैन टेक अ 9-day वेकेशन वेरी वेरी सून कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. बिग
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना.
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना.
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है.
1: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back to school rent a car offer on Self Drive. Self Drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Self Drive, get ready, get driving.
6: The Big Mix, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big 106.2, brought to you by insurancemarket.ae.
7: Drive home a brand new Jetter. Buy now, pay next year. Zero VAT or zero interest. With EMIs starting from just 966 dirhams per month.
6: The Big Mix. Miss kiya gaya?
8: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते.
9: बिग चेक इन के लिए रेडी हो जर्मनी जाने के लिए?
8: यस यस.
9: ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपको ये वाला सॉन्ग जो है, अगर आप जर्मनी में जो जाओगे कैसल्स में, एकदम प्रिंस क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको कैसा फील होगा? लेट मी जस्ट नो कि ये गाना जो है कौन सी फिल्म का है.
10: कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के है,
9: एकदम यही फील आएगी ना जर्मनी जाके, है ना, उन कैसल्स में. ओके, यस पातो, व्हाट फिल्म इज दिस?
8: मुगले आजम समथिंग, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय मूवी, जो देखो.
9: जो देखो, आई वाज लाइक ये मुगले आजम पर कैसे पहुंच गए.
8: एक्चुअली आई फॉरगेट द नेम ऑफ मूवी, दैट्स व्हाई,
9: बट दैट्स अमेजिंग.
8: Thank you so much.
9: That's the correct answer. और आपका नाम shortlist होता है for the big check-in. अगर इसके बाद आपका नाम shortlist होगा, आप हमारे साथ चलेंगे, आपको call मिल जाएगा. लेकिन for this base, this stage, आप जीत चुके हैं, आपका नाम जो है shortlist हो चुका है.
6: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
0: It's .9:30 on the clock and let's take a look back to school. Very important to check out where the traffic is. Shuruaat karte hain with the 611. Aaj subah se bahut zyada congestion at Emirates Road, and this is around Dubai Land, Zayed University, Arabian Ranches 3 ki taraf jyada wo ye traffic hai, southbound traffic. You'll find a lot of congestion out there. At least 7 to 11 minutes ki der aapko wahan par hone wali hai. Then there's 311 par bhi heading south after Silicon Oasis. A bit of congestion going towards Falcon City of Wonders wala area. Slow moving traffic around Global Village wala area as well. Then you will find congestion at Arabian Ranches ke sare jo roads hain. Har jagah par aapko traffic milne wala hai. There's D54 also, which is quite congested around Arabian Ranches 2. And then Hesa Street, Umsikim Street also a bit congested going towards 44 from 311. Speaking about 44, going towards Business Bay from D3. And then heading south towards Alkuz also a bit of congestion. And 66 per Dubai Alain Road around Al Jadaf, you'll find 4 se 5 minute ka congestion heading north.
6: Get ready for school with Self Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
11: मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम. शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं.
6: बिग 106.2.

0: सच बताइए, अभी अभी लंबा वीकेंड खत्म हुआ है एंड यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ द नेक्स्ट वेकेशन राइट?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: टोटली अंडरस्टैंड द इमोशन एंड व्हाट इज दैट वन इक्वेशन दैट यू हैव टू सॉल्व. अगर आपको एक 9 दिन की लंबी चौड़ी छुट्टी चाहिए इन द मंथ ऑफ डिसंबर, सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर आपके पास 3 एनुअल लीव्स बची हुई हैं, 3 छुट्टियां अगर आपके पास बची हुई हैं, देन this could be possible. देखो क्या है कि 28th, 29th of November, right, is a weekend. 28th, 29th November weekend है, यानी कि 27 तारीख फ्राइडे को आप निकल जाओ, छूमंतर हो जाओ. फिर 30th एंड 1st of December को आप लीजिए एनुअल लीव, राइट, हो गए 4 दिन. 2nd एंड 3rd December ईद अल इत्तेहाद की छुट्टी है. 4th of December एक और एनुअल लीव. 5th, 6th December is the weekend, which means totally you could get 9 days of a लंबा चौड़ा वेकेशन. बस थोड़ी सी प्लानिंग होनी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी एंड थोड़ी सी प्लानिंग, एडवांस बुकिंग करो टिकट की और निकल पड़ो. देखो जनहित में जा रही ये मैसेज राइट हियर ऑन बिग 106.2. बिकॉज आई एम योर बेस्ट बंधु इन द मॉर्निंग, बंधु 2.2 कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल फ्रॉम कॉकटेल टू दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग 10:09।
1: Bollywood.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: जब चाहिए इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम इंडिजेशन, तब डाबर पुदीन हरा दे आपको रिलीफ नेचुरली। इसके छोटे से पर्ल में है आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स, जो आपके स्टमक को देता है सूदिंग रिलीफ। डाबर पुदीन हरा से आप होंगे रिलैक्स्ड और फ्रेश। डाबर पुदीन हरा, योर पॉकेट साइज कंपेनियन। इट्स नेचुरल एंड आयुर्वेदिक, जो रखे आपको इंडिजेशन फ्री। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंजम्पशन।
1: Big 106.2. That's my song.

0: Big Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच? पाँच।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: Tum kar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: बिग चेक इन के लिए रेडी हो जर्मनी जाने के लिए?
3: यस यस।
2: ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपको ये वाला सॉन्ग जो है, अगर आप जर्मनी में जो जाओगे कैसल्स में, एकदम प्रिंस क्वीन ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको कैसा फील होगा? लेट मी जस्ट नो कि ये गाना जो है कौन सी फिल्म का है।
4: कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के है।
2: एकदम यही फील आएगी ना जर्मनी जाके, है ना, उन कैसल्स में। ओके, यस बात। व्हाट फिल्म इज दिस?
3: मुगले आजम समथिंग, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय मूवी, जोधा
2: अकबर। आई वाज लाइक, ये मुगले आजम पर कैसे पहुंच गए?
3: एक्चुअली आई फॉरगेट द नेम ऑफ मूवी, दैट्स व्हाई,
2: बट दैट्स अमेजिंग।
3: Thank you so much.
2: That's the correct answer. और आपका नाम shortlist होता है for the big check-in. अगर इसके बाद आपका नाम shortlist होगा, आप हमारे साथ चलेंगे, आपको call मिल जाएगा. लेकिन for this base, this stage, आप जीत चुके हैं. आपका नाम जो है shortlist हो चुका है.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 से मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड आई एम श्योर यार कि जो लॉन्ग वीकेंड निकला है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल की तैयारी में ही निकला होगा. एंड बाय गॉड यार, यूएई पेरेंट्स के इतने चेहरे पे खुशी है सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल बस देखने के बाद. आई एम टेलिंग यू दिस इट्स अ लॉट. इट वाज समथिंग जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. लॉन्ग वीकेंड आपका कैसे निकला मुझे बताओ 0543091062 पर, एंड गेट रेडी विद मी की

0: देखने के बाद लगा कि बच्चे जो हैं गेट रेडी फॉर स्कूल हो चुके हैं विद सेल्फ ड्राइव रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम्स पर मंथ फ्लैट रेट फॉर द ईयर जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न. सो बेसिकली कि जो स्कूल बैक टू रिटर्न हो चुके हैं बैक टू पवेलियन हो चुका है दैट इज बेसिकली वेरी स्मूथ नाउ विद सेल्फ ड्राइव. सो कोई भी जो स्टार्टिंग में सुबह सुबह पस उड़ी होती है ना वो नहीं होगी.
1: Mazuri
0: track coming away after this one. Till then, you keep it logged to Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Jetor UAE, part of Elite Group Holding, and Dabur Pudinhara. Listen to her every day.
1: Mugembo! खुश हुआ
2: निखिल को, जिन्होंने जब फोन उठाया तो पीछे से आवाजें आ रही थी. मैंने बोला निखिल मम्मी डांट रही है क्या, तो निखिल ने कहा नहीं बीवी है ना निखिल. तो बीवी क्यों डांट रही है?
3: अरे नहीं.
2: अच्छा नहीं डांट रही है,
3: लेट आया था ऑफिस से.
2: अच्छा इसलिए डांट रही थी.
3: कोशिश कर रहा था, इतने में आपको कॉल आ गया.
2: बहुत बहुत सॉलिड डांट पड़ रही थी बाय द वे निखिल को जब मैंने कॉल किया है. चलो निखिल मैं थोड़ा सा आपको मौका देती हूँ कि 4-5 दिन बीवी से दूर रहो. निखिल जर्मनी गए हो आप पहले?
3: नहीं.
2: निखिल आपको हम दे रहे हैं मौका शॉर्टलिस्ट होने का फॉर दिस अमेजिंग ट्रिप टू जर्मनी. वेरी वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन एंड देन प्ले अ डायलॉग. आपने बस गेस करना है कि वो डायलॉग किस मूवी से था. ठीक है?
3: ओके.
4: मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जारा के लिए दिल से एक दुआ जरूर निकलती है. किसकी आंखों में कभी आंसू ना आए.
2: बिल्कुल सही जवाब. निखिल मुझे एक बात तो बताना कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा.

0: आप तो सीधा ही मेरी जर्मनी में वहीं पे पिटाई चालू हो जाएगी।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: आज से स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं, ऑफकोर्स रोड्स आर बिजियर, लेकिन अगर आप शारजा से आ रहे हैं एक्सपेक्ट स्लोअर मूवमेंट अराउंड E11 अल इत्तेहाद रोड, पर्टिकुलरली अराउंड अल नाहदा एंड E311 शेख मोहम्मद बिन ज़ायद पर भी आपको काफी हेवी ट्रैफिक मिलेगा अराउंड मोहिजना अल गुज़ेज। अगर इसके अलावा कहीं और फंसे हो डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर।
1: गेट रेडी फॉर स्कूल विद सेल्फ ड्राइव, रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 dirhams अ मंथ फ्लैट रेट विद जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न्स। Big 106.2।
3: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में वो अपनी आपके साथ एंड दिस वन इज गोइंग टू बी अ बिग रिलीज. बात कर रही हूँ मैं करीना कपूर खान की फिल्म दायरा के बारे में, जो कि जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है. रिलीज होने वाली है 18th ऑफ सितंबर को.
2: ये तीसरी बार है ना आप और डीसीपी रमन कुमार ने इससे पहले भी एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस की है.
3: एक्यूज ने मौका ढूंढा और एस्केप करने की कोशिश की.
2: क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान
3: उन्होंने हमारे टीम पर अटैक किया
2: और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में मार दिया.
1: From the filmmakers of Razi, Sam Bahadur, the National Award winner, Meghna Gulzar की ये फिल्म है. And पहली बार Kareena Kapoor Khan and Meghna Gulzar जो है साथ में काम कर रहे हैं. DCP का रोल है यहाँ पर Kareena Kapoor Khan का. By the way, this film is a crime drama thriller. और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसी फिल्में जो ना इस genre की फिल्में जो हैं बहुत OTT पर ही आती हैं, थिएटर्स में नहीं आती. बट द गुड पार्ट इज कि इस फिल्म में 7 अक्टूबर को क्या हुआ था हमें पता लगेगा इन थिएटर्स. On 18th of September, I am looking forward for this one because Kareena Kapoor Khan किसको नहीं पसंद है यार. He has a different charm. जौन सा मर्जी रोल दे दो यार. 18th September it is. Till then, you keep it locked to Big 106.2.

0: तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में हूँ अवनी आपके साथ. एंड इस फिल्म को यार 25 साल पूरे हो गए हैं. मुझे मेरी एज बताते शर्म आ रही है बिकॉज इट्स सिमिलर टू दिस नंबर. 25 साल हो चुके हैं दिल चाहता है, स्टारिंग अक्षय खन्ना, आमिर खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, डिंपल कपाड़िया, सोनाली कुलकर्णी एंड सुचित्रा पिल्लई. मुझे सुचित्रा पिल्लई इतने पसंद थे ना, प्रिया एज सैफ अली खान की गर्लफ्रेंड. भाई सब बोलते थे यार कि हमें ना प्रिया जैसी गर्लफ्रेंड बननी है. एंड हर लड़का कहता था यार मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए. वेल द सीन फ्रॉम दिल चाहता है आज तक यू नो टाइमलेस है, आज तक ये हिट करता है यार.
2: जानते हो हम तीनों उस जहाज की तरह हैं, जो आज नहीं तो कल अपनी मंजिलों को ढूंढते हुए निकलेंगे. और हो सकता है कि हमारी मंजिलें अलग अलग हो.
3: दिल चाहता है
4: तो ये सब क्यों कह रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा.
1: अक्षय खन्ना ये क्यों कह रहे थे अब हमें बहुत अच्छे से समझ में लगता है. 25 साल हो चुके हैं एंड बहुत लोग दिल चाहता है देखने के बाद गोवा ट्रिप पे जरूर गए थे. इफ यू आर वन ऑफ देम कॉल करो मुझे 800-1062 पर. एक सीक्रेट बता दूं कि मैं आज तक अभी तक गोवा नहीं गई हूँ, नहीं मिल पाया यार मौका. मैं कहाँ से फ्रेंड्स के साथ प्लान बना के जाऊँ. एंड अगर आपका भी ये प्लान व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकल के बन चुका था, आप हो आए हैं फ्रेंड ग्रुप के साथ गोवा ये फिल्म देखने के बाद, डू लेट मी नो. कॉल करो मुझे 800-1062 पर. एंड हाल ही में 25 साल पूरे हुए हैं तो इसका एक रीयूनियन हुआ है दिल चाहता की पूरी कास्ट के साथ. एंड ऑल दे हैव टू से इज कि आज भी ये फिल्म वैसी ही लगती है, उसी पर्सपेक्टिव से लोग देखते हैं जिस पर्सपेक्टिव से 25 साल पहले देखते थे. टाइमलेस मूवी. गोवा ट्रिप गए हो कॉल करो 800-1062. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक टाइम है फिलहाल जर्मनी जाने का, बट घड़ी के बज रहे हैं 2:09।
2: Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड आपको लेकर जाऊंगी अपने साथ जर्मनी. करना आपको कुछ नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062 के व्हाट्सएप नंबर पर. एंड जर्मनी इज नोन फॉर इट्स बिग टाइम बेकरी ट्रीट्स. और मुझे पता है कुकिंग से पहले ना मुझे बेकिंग पहले ही आ गई थी एंड लेकिन तब भी आप ये फूड वाला कॉन्टेस्ट जो है जीत सकते हो कि नहीं, विल सी. टाइप करो बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल. खेलेंगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम एंड देखते हैं आज किसका नाम शॉर्टलिस्ट होता है. सपने में नहीं भाई, असलियत में लेके जा रहे हैं. ऑल पेड एक्सपेंस ट्रिप. स्टे ट्यून्ड.
1: Participate in the Big Check-In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: The Big Mix with Avni. On Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हम खेल रहे हैं बिग चेक इन जर्मनी के लिए कॉन्टेस्ट. आज हमारे साथ हमने कॉल किया है लेस्टर को. हाय लेस्टर.
3: हाय अवनी.
2: एक्साइटेड हो जर्मनी जाने के लिए?
3: यस एक्साइटेड एंड नर्वस एक्चुअली.
2: हाँ सुनाई दे रहा है, आवाज में सुनाई दे रहा है. सो ओके, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है. ओके, मैं 3 फूड डिशेस बताऊंगी, आपको मुझे बताना है कि कौन सी एक डिश इन तीनों में से जर्मनी की है.
3: ओके
2: ओके. ऑप्शन 1 ब्रैटवर्स्ट.
3: ओके.
2: ऑप्शन 2 चोरिजो.
3: ओके.
2: ऑप्शन 3 सलामी.
3: इट्स ऑप्शन ए.
2: हाउ आर यू सो श्योर?
3: द डिश एक्चुअली साउंड्स जर्मन. द सेकंड वन इज आई थिंक इटालियन और द थर्ड वन इज, सॉरी, द थर्ड वन इज इटालियन. चोरिजो इज लाइक अ पोर्चुगल टाइप डिश.
2: ओके, कोई बात नहीं, आपने सही जवाब दिया है पहली बात तो. वेरी नाइस,
3: थैंक यू सो मच.
2: हमें वैसे भी सिर्फ जर्मनी की डिश से लेना देना था, बाकी आप चाहे गलत बता दो चलेगा. चोरिजो एक्चुअली स्पेन का था, सलामी यस इट्स फ्रॉम इटली, लेकिन आपने सही जवाब दिया, ब्रैटवर्स्ट इज फ्रॉम जर्मनी. वाओ यार, दैट वाज सो इजी फॉर यू.
3: थैंक यू सो मच. यस.
2: अच्छा पहले लिसनर्स को ये बता दो कि मैंने आपको फोन किया वो कितना इजी था, क्या किया था आपने?
3: I messaged on WhatsApp, on WhatsApp number with German.
2: अगर बाकी लिसनर्स को अपना नाम रजिस्टर करवाना है फॉर बिग चेक इन जर्मनी, ऑल यू गॉट टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 0543091062. आज का जो नाम रजिस्टर होना था वो हो चुका है लेस्टर का. कांग्रेचुलेशंस.
3: थैंक यू सो मच अवनी.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: brought to you by insurancemarket.ae.
1: insurancemarket.ae.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: बैक टू स्कूल ट्रैफिक इज ऑफिशियली बैक. E3-11 एंड E11 पर तो आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा ही, बट इफ यू आर विद इन दुबई, गिव योर सेल्फ अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम अराउंड बिजनेस बे एंड रसल खोर. अगर कहीं पर और फंसे हुए ट्रैफिक में, डू लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर.
0: Get ready for school with self-drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big.

0: यार तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आपको भी अगर लॉन्ग ड्राइव्स की लत लगी हुई है, इट्स योर पैशन प्रोजेक्ट, तो जरा सुन के जाओ, ऑयल प्राइसेस बढ़ चुके हैं इस सितंबर से।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 से मैं हूं अवनि आपके साथ। एंड यूएई फ्यूल प्राइस कमिटी हैज अनाउंस न्यू पेट्रोल एंड डीजल रेट्स फॉर सितंबर। डीजल जो है ज्यादा बढ़ा है, 0.50 दिरहम्स पर लीटर बढ़ चुका है। हालांकि पेट्रोल जो है स्पेशल 98 3.80 दिरहम्स पर लीटर हो चुका है, स्पेशल 95 3.69 दिरहम्स पर लीटर, E प्लस 3.61 दिरहम्स पर लीटर। भाई मैं बता रही हूँ, आज जो है ना, बस आज ट्रैफिक होने वाला है पेट्रोल पंप्स पर, बिकॉज ऑफकोर्स यार 0.20 दिरहम्स बड़ा है पेट्रोल जनरली, तो कौन नहीं बढ़ाएगा भाई। August 31 आज ही लास्ट दिन है। मोरनी पेट्रोल पंप पे जाएंगे आज। कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

जैसा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे।

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: पीक लंच आवर टाइम बज रहे हैं 3:06।
1: Bollywood.

0: Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं अपनी आपके साथ एंड खाने की मैं बात कर रही थी. ऑफ कोर्स इट्स पीक लंच आवर टाइम गोइंग ऑन. अगर अभी तक लंच नहीं किया है, ये गेम खेलने के बाद भूख लग जाएगी बहुत अच्छी खासी, और अगर कर लिया है तो भाई फिर से लग जाएगी. फूड इज समथिंग जो हमेशा ना खुशी ही देता है हमें. नहीं, सुबह बना लिया खाना, खा लिया मस्त. और आज तो मैंने आई सुबह मैंने ओवरनाइट ओट्स बनाए थे. सुबह मेरा मन किया यार मुझे ना पोहा खाना है, मुझे मीठा खाने का मन नहीं कर रहा. मैंने पोहा बनाया, फिर मैंने कहा अब नमकीन खा लिया तो कुछ मीठा भी खा लेती हूँ. इमेजिन मैंने दो ब्रेकफास्ट करे आज. आपको लगता है आप मुझसे बड़े फूडी हो? अगर आप हो, कॉल करो मुझे 800-1062 पर, बिकॉज अब सुबह के बाद क्या खाना है मुझे यही सोच रही हूँ मैं. रात को क्या बनाऊँ? फिलहाल क्या होना है बता देती हूँ. वी आर गोना प्ले खाओ पियो ऐश करो. कॉल करो मुझे इस टोल फ्री नंबर पर 800-1062. खेलूंगी आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी फूड वाली गेम. 800-1062 इज अ नंबर. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: month, rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
1: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back to school season. Self-drive. Get ready. Get driving.
2: The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Listen to her every day.
3: Mugambo! खुश हुआ
4: निखिल को, जिन्होंने जब फोन उठाया तो पीछे से आवाजें आ रही थी. मैंने बोला निखिल मम्मी डांट रही है क्या, तो निखिल ने कहा नहीं बीवी है ना निखिल. तो बीवी क्यों डांट रही है?
5: अरे नहीं.
4: अच्छा नहीं डांट रही है,
5: लेट आया था ऑफिस से.
4: अच्छा इसलिए डांट रही थी,
5: कोशिश कर रहा था इतने में आपको कॉल आ गया.
4: बहुत बहुत सॉलिड डांट पड़ रही थी बाय द वे निखिल को जब मैंने कॉल किया है. चलो निखिल मैं थोड़ा सा आपको मौका देती हूँ कि 4-5 दिन बीवी से दूर रहो. निखिल जर्मनी गए हो आप पहले?
5: नहीं.
4: निखिल आपको हम दे रहे हैं मौका शॉर्टलिस्ट होने का फॉर दिस अमेजिंग ट्रिप टू जर्मनी. वेरी वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन एंड देन प्ले अ डायलॉग. आपने बस गेस करना है कि वो डायलॉग किस मूवी से था. ठीक है?
5: ओके.
6: मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जारा के लिए दिल से एक दुआ जरूर निकलती है. किसकी आंखों में कभी आंसू ना आए.
4: बिल्कुल सही जवाब. बट निखिल मुझे एक बात तो बताना कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा?
5: आप तो सीधा ही मेरी जर्मनी में वहीं पे पिटाई चालू हो गई.
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
7: क्या तुमने कोई बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
8: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ.
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
2: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
11: दिन आगे बढ़ता है, ह्यूमिडिटी भी आगे बढ़ती रहती है. इट्स स्टिल 38 डिग्रीज एंड फील्स लाइक 50, लेकिन ह्यूमिड लेवल्स 53% पर हैं.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Get ready for school with Self-Drive. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज द टाइम वी प्ले गाओ पियो ऐश करो. और आज हमारे साथ हैं डिंपल. हाय डिंपल.
2: हाय.
1: क्या आपने लंच कर लिया है?
2: अभी किया हमने.
1: क्या क्या खाया?
2: मैकडॉनल्ड्स.
1: बर्गर. ओके. आज तो बाहर का लंच हुआ है, बनता भी था यार. मंडे ब्लूज हमें कवर अप करने होते हैं. आई एम गोना गिव यू टू डिशेस, आपको दोनों में से कोई एक चूज करनी है. ओके
2: ओके डन.
1: इट्स गोइंग टू बी अ रैपिड फायर. ओके, बर्गर खाया आपने तो बर्गर या पिज्जा?
2: बर्गर.
1: ओके, बर्गर या पास्ता?
2: पास्ता.
1: ओके, पास्ता या फिर हाका नूडल्स?
2: हाका नूडल्स.
1: ओके, हाका नूडल्स या मंचूरियन?
2: हाका नूडल्स.
1: ओके, हाका नूडल्स या पाव भाजी?
2: पाव भाजी.
1: पाव भाजी या वड़ा पाव?
2: पाव भाजी.
1: पाव भाजी या छोले भटूरे?
2: पाव भाजी.
1: पाव भाजी या आलू का पराठा?
2: आलू का पराठा.
1: आलू का पराठा या फिर गोभी का पराठा?
2: आलू का पराठा.
1: आलू का पराठा या पनीर पराठा?
2: आलू पराठा.
1: आलू पराठा या राजमा चावल?
2: आलू पराठा.
1: देख लो, आलू पराठा इज फॉर द विन.
2: इट इज सो गुड. और घर का बना हो तो इवन बेटर.
1: देख लो, आपके बर्गर बर्गर को हरा दिया आलू पराठा ने. अच्छा, आलू पराठा से ऊपर कुछ है?
2: अचार, आम का अचार.
1: आलू पराठा को कोई बीट करने के लिए डिश है? ओके. इफ यू रियली थिंक कि आलू पराठा के ऊपर कोई और डिश जाती है, ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 पर. तब तक मैं और डिंपल जरा डिस्कस करते हैं कि आलू पराठा सबसे बेस्ट कहाँ का होता है. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एंट्री हो चुकी है मेगा झील गणेश चतुर्थी फेस्टिव शॉपिंग एग्जीबिशन की।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनि आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ सीजन 5 ऑफ मेगा झील गणेश चतुर्थी फेस्टिव शॉपिंग एग्जीबिशन प्रेजेंटेड बाय मिश ब्रोस एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट्स। 5th सितंबर को होने वाला है 10 AM to 10 PM DoubleTree बाय हिल्टन मनखूल दुबई में, जहां पर आप शॉप कर सकते हैं फॉर फैशन, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, फेस्टिव एसेंशियल्स, एंटरटेनमेंट एंड एक्टिविटीज भी होंगी वहां पे, ढोल ताशा, लकी ड्रॉज, किड्स एक्टिविटीज एंड अ लॉट मोर। बेसिकली एडवेंचर और एंटरटेनमेंट का भरपूर डोजेज मिलेगा, सपोर्टेड बाय मकवानो टी दैट कनेक्ट्स, श्री अग्रवाल स्वीट्स, प्रीमियम इंदौर स्वीट्स, एंटरटेनमेंट पार्टनर्स डीसी प्रोडक्शंस, एमिराइज टीन्स कनेक्ट, झील गणेश चतुर्थी एग्जीबिशन सीजन 5 वेयर शॉपिंग मीट्स सेलिब्रेशन 5th सितंबर डबल ट्री बाय हिल्टन मनखूल। सी यू ऑल देयर, क्योंकि मैं एडवेंचर मिस करूं नहीं हो सकता यार। कीप इट लॉक टू बिग 106.2।

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। आज तो सेकंड का पता लग रहा है यार। मंडे जो है 4:07।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: When I check screens, facts check करती हूँ तो थोड़ी 37 degrees हो रहा है फिलहाल, लेकिन it still feels like 50. Humidity जो है चल रही है 56% पर।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: बिलाल आला बिलाल अजय देवगन की फिल्में करवा रही है यार।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 में अवनि आपके साथ। एंड अगर मैं बात करूं लास्ट 5 रिलीजेस ऑफ अजय देवगन, हाँ काउंट करना मेरे साथ ठीक है, सिंगम 3, रेड 2, सन ऑफ सरदार 2, दे दे प्यार दे 2, धमाल 4, ये लास्ट 5 थी। कोई आपसे पूछा ना कि यार आपका 5 साल के बाद क्या करियर प्लान है, क्या करने वाले हो, भाई इनका प्लान सॉर्टेड है। फिल्म फ्रेंचाइजी के सीक्वल्स जो है ना फुल जील पर चल रहे हैं। अपकमिंग फिल्म्स ऑफ अजय देवगन, मार्क करना अगेन, गोलमाल 5, शैतान 2, रेड 3, धमाल 5 एंड हम सबकी फेवरेट यार दृश्यम 3 आने वाली है अजय देवगन की। लेकिन जो भी कहो यार फिल्में करते रहो बिकॉज हमें मजा नहीं आता यार अजय देवगन के बिना। सच में यार सुना सुना लगने लगता है। वेल विच फिल्म यू आर रूटिंग फॉर? डेफिनेटली मेरे लिए तो भाई दृश्यम 3 ही है। अगर आपके लिए कोई और है, गोलमाल 5, शैतान 2, रेड 3 या धमाल 5, बताओ मुझे 0543091062 पर मैसेज करके। टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
1: आपको ये फन फैक्ट ना शायद पता नहीं होगा, मधुबाला को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बॉक्स ऑफिस पॉइजन कहा जाता था, लेकिन द सैड पार्ट इज उन्हें आज तक कोई फिल्म अवार्ड नहीं मिला.
0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. But the best part is अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उनकी बायोपिक अब आ रही है थ्रू नन अदर देन संजय लीला भंसाली एंड द मैग्नानिमस वर्सटैलिटी ऑफ दिस एक्टर.
2: हाल कैसा है जनाब का?
3: क्या ख्याल है आपका?
1: ख्याल तो मेरा फिलहाल ये है कि क्योंकि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म होने वाली है तो ग्रैंडियर जो है टॉप नॉच लेवल का होगा. 9 साल की उम्र से यार उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था मधुबाला ने, जिनका असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था. एंड चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उनको बसंत कहते थे. 1942 में उन्होंने काम करना शुरू किया था. एंड जस्ट इमेजिन नाउ कि संजय लीला भंसाली में जब सारा अर्जुन एज मधुबाला काम करेंगी और ये वाला गाना आएगा तो बिग टाइम फिल्मी पर्सन आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन. लेट्स सी हाउ इट गोज. फिल्मिंग जो है सितंबर में शुरू हो जाएगी मधुबाला की. सारा अर्जुन इन एंड एज मधुबाला, अ फिल्म बाय संजय लीला भंसाली. वेल यू कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:07।
2: बॉलीवुड

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: मंडे के दिन एक ही चीज थ्रिलिंग और एक्साइटिंग होती है, घर जाना. वाली हेडिंग होम एवरी सिंगल इवनिंग वी सिंग, हम माहौल बनाते हैं, गाना आए या ना आए. अगर आपको गाने का शौक है देन दिस इज इट, इट्स टाइम फॉर द कारियोकी. आपका कॉन्सर्ट, आपकी आवाज एंड ऑफ कोर्स तालियों की चिंता करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बटन मेरे हाथ में है तो तालियां 100% गारंटीड है. फिलहाल दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर कैरियोके सॉन्ग. इनफैक्ट दिस वीकेंड मैं एक पार्टी में गई थी जहाँ पे कैरियोकी हो रहा था एंड लोग बड़े एक्साइटेड हो गए इस गाने को सुनते ही एंड गाते ही. इनफैक्ट इसी गाने को चार लोगों ने अपनी अलग अलग आवाज में गाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज शाम हम भी इसी गाने पर माहौल बनाते हैं.

अगर गाना याद आ गया है एंड आप ये गाना गाना चाहते हैं, then very very simple, give me a call. We are karaokeing here 800-1062 par. You can also send me a WhatsApp 0543-09-1062. It is

0: Big. आप सुन रहे हैं Big 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, brought to you by selfdrive.ae.
3: Digestion cool tips with Dabur Pudin Hara.
4: गर्मी हो या हैवी मील्स के बाद डिस्कम्फर्ट, डाबर पुदीन हरा है आपका अंदर का एसी। आयुर्वेदिक मिंट ऑयल्स फॉर अ रिलैक्स्ड कंफर्टेबल टमी।
3: डाबर पुदीन हरा, स्टे इंडिजेशन फ्री द नेचुरल वे। अवेलेबल ऑन नून मिनट्स। कंसल्ट योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट बिफोर कंसम्पशन।
5: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
6: द बैटल फॉर द थ्रोन ऑफ मिर्जापुर इज फार फ्रॉम ओवर। The saga moves to the big screen. XL Entertainment brings you the most explosive, unseen chapter of the Mirzapur universe at a theater near you. Releasing on the 4th of September. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win free invites, keep listening to Big 106.2.
7: Dubai, get ready for the Mega Zeal Ganesh Chaturthi Festive Shopping Exhibition Season 5, presented by Mish Bros Advertising and Events. 5th September, Doubletree by Hilton, Mankhool, 10 a.m. to 10 p.m. Shop fashion, jewelry, lifestyle and festive essentials with Dhol Tasha, Lucky Draws, Kids Activities and lots more. Zeal Season 5, where shopping meets celebration. Supported by Mukwanu, tea that connects. Shri Agrawal Sweets, Premium Indoor Sweets. Entertainment partners, DC Productions and MRI's Teens Connect. 5th September, Doubletree by Hilton, Mankhool. See you there. Event made large by Big 106.2.
0: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
8: चलो जी, शुरुआत हो चुकी है मंडे शाम के ट्रैफिक की। 1 घंटा 10 मिनट का डिले है शेख जायद पे, वेट फॉर इट। 1 घंटा 12 मिनट का डिले ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद। इट्स ऑल पैक्ड, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। हैवी ट्रैफिक एट द मोमेंट इफ यू अराउंड दुबई फेस्टिवल सिटी, उमरमूल, नादल हमर, रसल खोर इंडस्ट्रियल एरिया। ट्रैफिक ट्रेलिंग वेरी वेरी स्लो एट द मोमेंट इफ यू अराउंड द दुबई डिजाइन डिस्ट्रिक्ट। ऑल्सो हैवी ट्रैफिक नियर JVC इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी। ऑल द वे टुवर्ड्स मोटर सिटी आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बता सकते हैं 800-1062 पर।
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
9: Sardar Khan naam hai hamara, bata dijiyega sabko.
10: Goli nahi marenge sare ko, keh ke lenge uski.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate with zero penalty on early returns. Big 106.2.
1: अ मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तबाही मचा दी है, यस 31 अगस्त को ये रिलीज हुई, टॉक्सिक फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स हैज क्रॉस्ड 285.2 करोड़, व्हिच इज अराउंड $34 million ग्लोबली इन द वेरी फर्स्ट वीक.
0: द बिग थ्रिल विद नॉन्सी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
1: One of the biggest releases of 2026, हजार करोड़ की मूवी है ये फिलहाल. I think it is going to challenge Dhurandhar a bit. अभी तक Dhurandhar has been the biggest blockbuster of 2026. So Toxic, a fairy tale for grown-ups में वो potential है. फिलहाल while you're heading back home, I know it's a Monday, पहला दिन है school का. कुछ अच्छी बातें करते हैं. How about कि आप एक छुट्टी ले लें. छुट्टी वो भी ऑल एक्सपेंसेस पेड एंड हम आपको अपने साथ लेकर जाएं ऑल द वे टू जर्मनी.
0: Participate in the Big Check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: अगर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, monotony is taking over, then this is it. We are taking you along and this is going to be a fun trip. We are fun people. Best part ये है, absolutely free है. But check-in करने के लिए WhatsApp करना बहुत जरूरी है. Big check-in, अपना पूरा नाम WhatsApp करना है to register 0543091062 पर. In fact, सारी information you'll get on our Insta handle also 106.2 Big FM. So अगर अभी तक register नहीं किया है, do it right away because मैं ये मानती हूँ कि दिन में एक बार यूनिवर्स आप पे मेहरबान होता है. तो क्या पता आज का ये मैसेज आपको शॉर्टलिस्ट करा दे. एंड द नेक्स्ट कॉल यू गेट फ्रॉम अस इज वी टेकिंग यू टू जर्मनी.
0: पार्टिसिपेट इन द बिग चेक एंड गेट अ चांस टू विन अ ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर डैन्यूब प्रॉपर्टीज. टाइटल स्पॉन्सर पापा जॉन्स. एसोसिएट स्पॉन्सर्स फोर्ड एंड शराफ डीजी. Travel partner, AFC Holidays, exclusively on Big 106.2.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: School's starting soon and we need a car.
3: And books, uniforms, everything.
2: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
4: And what if we need it for a short while?
2: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
0: The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
6: Hey,
0: jaldi
6: tera khada ra. Chal hata. Haan, haan. Arre, jaldi tera chunda. Haan, haan.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: आज तो मजा आ गया. एक तो मंडे पहला दिन स्कूल का और ट्रैफिक का हाल देखो. एक घंटा 12 मिनट का डिले है. मतलब जो लोग अजमान निकल जाते हैं इस वक्त हमारे ऑफिस में भी बैठे हुए हैं टू अवॉइड ट्रैफिक. इट इज पैक्ड, इट्स नॉट मूविंग. हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद, नादल हमर, उम्र मूल, नादल शीबा. फिलहाल एक घंटा 6 मिनट का डिले है शेख जायद पे, बट अभी पार्टी शुरू हुई है. वेट करो अंटिल 6:30. मुझे लगता है आज आपसे पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी. इसके अलावा देयर इज पैची ट्रैफिक ऑन द हेसी स्ट्रीट इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स जेवीसी जेवीटी ऑल द वे टुवर्ड्स मोटर सिटी. राइट नाउ अ 48-minute डिले. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट, इनफैक्ट लेट मी नो कहां ट्रैफिक नहीं है. 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2.
8: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
9: नहीं, ये तो मुफ्त है.
8: गुड, चलो फोन लगाओ.
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: big thrill with Mansi on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: मंडे की शाम है एंड ऑफ कोर्स द वेरी फर्स्ट डे बैक टू स्कूल. आई नो यू आर टायर्ड, यू आर हेडिंग बैक होम आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड, बट दिस इज हाउ वी एंटरटेन आवरसेल्व्स. हम गाना गाते हैं, किसी को अच्छा लगे ना लगे, खुद को अच्छा लगना चाहिए विद द कैरियोकी. जॉइनिंग अस इज महेंद्र. हाय महेंद्र.
2: हाय, हाउ आर यू मानसी?
1: आई एम गुड, हाउ आर यू? कैसा रहा द फर्स्ट डे बैक टू स्कूल?
2: वेरी हेक्टिक.
1: आई नो, स्पेशली आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड.
2: या
1: How hard was it on a scale of 1 to 10? मेरे बच्चे हैं नहीं सर, तो मेरा तो सेम ही था. 10 बजे उठी हूँ मैं सोके. थोड़ा सा नजर मत लगाना, बट आप जल सकते हो. So on a scale of 1 to 10, how hard was it to wake them up and get them ready and send them to school?
2: I'd put it somewhere at
1: 11. Oh my god, so they were reluctant to get up in the morning because I was that child.
2: Yeah, it's not even only about I'm looking at drive bahut zyada from where I stay and where the school is, so it's quite a long drive. So it gets very hard to commute back and forth.
1: अभी यू आर गेटिंग बैक होम नाउ, सो द डे इज ऑलमोस्ट डन एंड एक दो दिन बाद रिदम पकड़ लेगा बैक टू स्कूल वाला रूटीन. आपकी आवाज बहुत अच्छी थी, आई एम श्योर यू सिंग वेल. I think so. You're a singer. This is a very popular karaoke song, and I didn't know until yesterday because I had gone to this party जहाँ पे suddenly everybody started singing and चार लोगों ने अपनी अलग अलग variations of इस गाने की सुनाई थी. तो अब हम सुनेंगे Mr. Mahind की आवाज में
0: karaoke.

0: ऑलराइट
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रूप मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जाए रूप मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, chaliya
0: chaliya. See, I was absolutely correct. A man who knows is Surin Tal. Fantastic. I want to ask you this, Mahim, because I work with a lot of Gen Zs and your kids, of course, are Gen Alpha. So, इन्हें तो 2010-2012 के गाने भी याद नहीं है, तो आपके बच्चों को ये गाने पता है?
1: No, no idea. But they like one song from the past, which is Zara Zara from Rehna Hai Tere Dil Mein.
0: Wow.
1: Somehow they relate.
0: For them, it is 100% past. Zara Zara for Gen Alpha is past for sure. Suddenly, मुझे realize हो गया कि अगर सही time पे सब कुछ होता, तो आज मैं भी बच्चों को back to school भेज रही होती. But you have a great evening. Lovely talking to you. Bye, Mahin.
1: Likewise,
0: Master. Thank you. Bye-bye. Yeah, karaoke. अगर आप भी गाना चाहते हैं, गाने का शौक रखते हैं, give me a call 800.

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Mansi. I know the traffic is crazy, and today also happens to be UAE's accident-free day. And अगर आपने वो pledge sign किया है, और आज के दिन अगर आप सारे rules and regulations to the T follow करते हैं, तो चार black point आप हटवा सकते हैं from your driving records. So drive safe. This is a chance के चार black points जो हैं, वो हट जाएंगे. फिलहाल, while you're heading back home, we're playing this fun game. It's called the 5-second rule. Sounds very, very easy. मेरी उतना ही मुश्किल है जितना लॉन्ग वीकेंड के बाद पहले दिन बच्चों को स्कूल भेजना. तो अगर आपको लगता है कि 5 सेकंड में आप सारे जवाब फटाफट दे सकते हैं, 800-1062 इज द नंबर टू डायल. फिलहाल किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 6:09।
2: Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: अगर मंडे की शाम 31 अगस्त बैक टू स्कूल के पहले दिन इतने एक्साइटेड हो तुम तो शायद सिंगल हो तुम, राइट मरियम? यू द ओनली वन हु इज साउंडिंग हैप्पी. मैं और मरियम दोनों जो है हमें बैक टू स्कूल के रूटीन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा रूटीन सेम रहता है.
3: बिल्कुल सही बात है.
2: फिलहाल मरियम, हाउ वाज योर मंडे?
3: इट्स प्रीटी टायरिंग. आई वर्क इन अ यूनिवर्सिटी सो ऑल द स्टूडेंट्स आर बैक.
2: आर यू दैट सुष्मिता सेन काइंड ऑफ अ प्रोफेसर? Miss Chandini.
3: No, I work in marketing, so social media kind of
2: person. Mariam.
3: Yes.
2: मजेदार गेम खेलने वाले हैं यहाँ पे. It's called the 5-second rule. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें बतानी हैं 5 second के अंदर. तैयार हो?
3: Okay.
2: All right.
1: 5-second rule.
4: Oh yeah.
2: Quickly name 3 things जिनका नाम शुरू होता है with the letter Z.
3: Zip, xylophone.
2: Xylophone.
3: Zebra. Oh, xylophone's with an X.
2: Spelling बताना जरा xylophone की. University teacher नहीं है, शुक्र है. Social
3: Zip,
2: media है.
3: Zebra and.
2: हो गया, time खत्म. Miss Chandini, time is over. 3 variety of mangoes.
3: Chausa.
2: हाँ. इसी को दिया
3: सुनिए. Sindri and Anwaratol.
2: क्या?
3: Chausa, Anwaratol and Sindri.
2: What is Anwaratol?
3: It's a type of mango in Pakistan.
2: Really? Achha, I didn't know that. Chalo, good information for me. Quickly, 3 Shahrukh Khan ki filmo ke naam.
3: Main hu na, kuch kuch hota hai, yes. Khushi kabhi kabhi.
2: Very nice. Shahrukh Khan fan, Miss Chandini. 3 things that are yellow.
3: The sun, my, hey? Oh my God.
2: Hey?
3: The pencil.
2: Ho gaya, time khatam.
3: And.
2: Time, 5 seconds. Oh, to be very, very quick. 3 aise jhoot jo aap apne boss ko bolte ho.
3: के आज गाड़ी का टायर फट गया, के मैं उठी नहीं और रोड पे एक्सीडेंट था.
2: इनमें से मानते कौन से?
3: सारे मान जाते हैं, बहुत ही अच्छे.
2: सिंगल है क्या वो भी?
3: तकरीबन.
2: तीन ऐसी चीजें दैट यू नोटिस इन अ गाय.
3: हिज स्माइल, हिज हाइट एंड हिज मसल्स.
2: ओहो, यू नीड द जिम बॉय.
3: I go to the gym myself, so it's
2: true. Oh, nice. 3 qualities in a man that you find very, very toxic.
3: Having social media.
2: Huh?
3: Oh my God.
2: What?
3: I don't even know.
2: Having social media?
3: Yeah.
2: So you want it's a guy not really to good. Not be on social media at all while you are managing
3: yes.
2: social media. Very nice.
3: Yes, is because I know the toxicity it holds.
2: Dilulu is this Lulu. 2026 में she is looking for a man with no social media. इतना भी बोलती ना कि जो अपना password दे दे social media का तो मैं बर्दाश्त कर लेती बहन.
1: 5 second rule.
4: Oh yeah.
2: मरियम, जितने expectations है ना आपके और मेरे, चलो मैंने तो गिव अप कर दिया है, बहुत मुश्किल होने वाला है. बट ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप इन बच्चे कुछ मंथ्स ऑफ 2026 में ये नो सोशल मीडिया वाला बंदा तुम्हें मिल जाए.
3: Inshallah.
2: Have
3: Thank
2: a great
3: so
2: evening. Lovely talking
3: you
2: to
3: too,
2: you. Bye. Yeah, yeah, 5 second rule. Ek hi rule aise khelne ka. Mujhe call karna hai on 800-1062. Keeping you company, main hoon Mansi. This is The Big Thrill. Daddy.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, दिस इज द बिग थ्रिल ऑफ मानसी। शाम के 4 बजते हैं, देसियों को लगता है कि यार एक समोसा हो जाए, चाय हो जाए, बट नॉट इन जर्मनी डार्लिंग। जर्मनी में 4 बजे कॉफी एंड केक जो है इसका ट्रेडिशन है, एंड इट इज कॉल्ड काफी एंड कुचेन। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट जर्मनी? क्योंकि जैसा देश वैसा भेस। वहां जाके प्लीज मैं समोसा ना आपको खाने दूंगी ना आपके साथ खाऊंगी। वी लव द कॉफी एंड द कुचेन। बट अगर आप ये सब एंजॉय करना चाहते हैं एंड यू वांट ट्रैवल विद टीम बिग ऑल द वे टू जर्मनी, दिस is an all expenses paid trip, then you have to check in. Check in karne ke liye WhatsApp karna bahut zaruri hai. Big check in apna naam right now to 0543091062.
0: Participate in the Big Check In contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor Danube Properties, title sponsor Papa John's, associate sponsors Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays, exclusively on Big 106.2.
1: So get said messaging, and अगर आपकी भी नॉलेज अच्छी है अबाउट वर्ल्ड क्विजीन, आपको पता है कि किस कंट्री का कौन सा फेवरेट डिश है, कौन सा खाना पॉपुलर है, देन दिस गेम इज गोना बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। बट शॉर्टलिस्ट होने के लिए रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, एंड फिलहाल मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी जर्मन की। आप भी शुरू करो, क्या पता अगला कॉल आप ही को आ जाए।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, this is the Big Thrill, Mansi. And जाता जाता August जो है वो बता गया है कि अगले महीने से खर्चा ज्यादा होने वाला है. पेट्रोल प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं. आई नो जितनी लंबी लाइन आज पेट्रोल पंप्स में लगी है उतनी तो कभी मेरे लिए किसी ने नहीं लगाई. बट यहाँ आपका खर्चा हो रहा है फ्यूल पे, वहाँ पे फ्री वेकेशन. दैट इज हाउ वी कॉम्पनसेट. दिस इज योर चांस टू चेक इन. वी टेकिंग यू टू जर्मनी. द लास्ट 10 मिनट्स फॉर यू शॉर्टलिस्ट होने के. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, डू इट राइट नाउ. Big check in your name to 0543091062.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: बॉलीवुड।

0: big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Are you Samba? तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae. Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: 45 minutes still delay आपको मिलने वाला है शेख जायद पर. It is very very slow moving. बंदा traffic से निकलेगा, फिर petrol भी fill कराना है. आज तो बहुत लंबा Monday है. Heavy traffic on the Sheikh Mohammed bin Zayed. 1 hour 12 minutes का delay. It is packed festival city. Nadal Hammer, Russell Core industrial area, Dubai Design District, Jeddah. सब एरियाज में बहुत ट्रैफिक है. इनफैक्ट सतुआ ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल एट द मोमेंट. प्लस इफ यू ऑन द जुमेरा रोड एंड गोइंग टूवर्ड्स मरीना, बहुत ट्रैफिक आश्रा मिलने वाला है. इनफैक्ट जुमेरा से मरीना भी आपको 35 टू 40 मिनट्स लगेंगे. अलवसल के पास भी आई सी स्लो मूविंग ट्रैफिक. एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate, with zero penalty on early returns. Big 106.2. Big 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसकी पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: All right, let me take you to 31st of August 2011. Sounds like yesterday, but it is decades ago. Good evening, I'm Nancy. This is The Big Thrill. Today, then on the August 31st in 2011, ye movie release hui thi. The movie was a Hindi remake of a 2010 Malayalam movie of the same name, written and directed by Siddiqui. And Siddiqui went on a historic run, directing the original Malayalam version, phir the Tamil remake, then the Bollywood version, phir Kannad mein, Telugu mein, aur Bengali mein bhi ye movie release hui. In fact, is movie se pehle Salman aur Kareena ko unlucky kaha jata tha on screen because in dono ka box office combination kabhi bhi koi hit de hi nahi paya, chahe wo Kyun Ki Ho, which is again a fantastic movie, ya Main aur Mrs. Khanna. And is movie ne wo jo streak tha wo break kiya and the movie became the highest grossing Bollywood film of 2011. I love this movie. I don't know how many of you remember the movie.
2: इस काम के लिए यही सही आदमी है, लवली सिंह
3: बॉडीगार्ड.
4: मैडम, जब तक मैं आपको उतरने को ना कहूँ, आप प्लीज मत उतरन.
5: कुछ तो करना पड़ेगा.
4: हेलो,
5: आई लव यू.
4: अरे
5: अब आगे आगे देखो, होता है क्या.
1: हिमेश रेशमिया का म्यूजिक, भाईजान की कॉमेडी एंड एक्शन. अगर आपको याद आ गया है, द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, आज ही के दिन रिलीज हुई थी 2011 में. 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
0: Big 106.2.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: 8 बज गए हैं, पेट्रोल भरवा लिया है, अभी भी लाइन में हो. व्हाट इज दिस सीन व्हाइल यू हेडिंग होम? आई कीप यू कंपनी हियर एंड दिस आर वी टॉकिंग अबाउट दिस मूवी जो 2011 में रिलीज हुई थी. इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजेस ऑफ 2011. इफ यू आर अ भाईजान फैन, देन आई एम श्योर यू लव दिस मूवी एज मच एज आई डू. करीना कपूर, सलमान खान एंड ऑफ कोर्स करिश्मा कपूर इन द मूवी. याद आ रहा है? याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे बताओ 800-1062 पर.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं। नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is still 36, le jayega around 33. Filhal humidity has 62% par.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: कहते हैं टाइम इज लिटरली फ्लाइंग व्हेन यू टॉक अबाउट दीज मूवीज. मुझे लगता है ये सच कहते हैं. 2011 मुझे लगता है वाज जस्ट यस्टरडे एंड इट्स डेकेड्स अगो. मतलब मेरी तो थोड़ी सी मैथ्स खराब है बट मुझे लगता है कि हो गए ना कितने जगतपाल. 2011 से 2026 कितने साल हो गए जरा कैलकुलेट कीजिएगा. खूबसूरत लड़की हूँ ना, मेरा मैथ्स खराब है. कितने साल? 15 साल. अब हाँ, जगतपाल जी ने बोल दिया 15 साल हो गए हैं, पर ऐसा लगता है कि कल ही देखी थी ये मूवी. टाइम भाग रहा है फिलहाल. मूवी का नाम क्या था जगतपाल जी?
3: मूवी का नाम था बॉडीगार्ड.
2: एब्सोल्युटली करेक्ट. लव दिस मूवी. मतलब करीना कपूर, सलमान खान, लवली सिंह. एंड आपको याद है जो वो लड़की फोन पे करीना ही ऑफ कोर्स बात करती है, उसकी आवाज करिश्मा ने डब की थी. हाँ, I was just reading, that was Karishma's voice.
3: मैंने मूवी नहीं देखा, मेरे को गाना याद है बस.
2: अच्छा, आपने मूवी देखा ही नहीं है? देखो देखो, अच्छी मूवी है सर. बहुत बड़ी कमाल हिट थी 2011 की. तो गाना तो वही याद होगा, तेरी मेरी है ना.
3: ओ यार, दैट्स अमेजिंग सॉन्ग. राहत साहब का गाना.
2: आपको कौन सा गाना याद था इफ नॉट दिस वन?
3: ये तो था ना, टीवी पे आता रहता था ये. सबका भाई सबकी जान.
2: ओ आओ जी बाओ जी, दिल से दिल मिलाओ जी, आ गया है देखो बॉडीगार्ड. जितने मुझे गाने याद है उतनी मैंने पढ़ाई याद की होती. तो चलो छोड़ो, फिलहाल कौन सा गाना सुनोगे? आपने मूवी तो देखी नहीं है, अब क्या मूवी की आपसे बात करूं. तो मुझे एक बात बताओ, ये गाना आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तेरी मेरी प्रेम कहानी. सो इन 2011 जगतपाल, वर यू सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर समवन और वाज समवन सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर यू?
3: I'm happily married, so...
2: I'm talking about 2011.
3: सुनते थे उस टाइम गाने, उस टाइम जवानी के दिन थे.
2: अच्छा, एक के लिए सुनते थे कि मल्टीपल चॉइस?
3: खुद के लिए. बाय द वे, I want to compliment you. I love the way you laugh.
2: इन्होंने जो बात पलटी है ना जगतपाल जी, मतलब आप सॉलिड खिलाड़ी हो. ये मुझसे और कुछ सवाल पूछे मैं इसे कॉम्प्लीमेंट दे देता हूँ. देखो, बहुत बहुत रिसर्च किया मैंने बंदों पे. चलो, बहुत दिनों बाद एक गाना हम दोनों भी सुन रहे हैं, तो लेट्स प्ले दिस वन बिकॉज 15 years टू बॉडीगार्ड. हैव अ ग्रेट इवनिंग जगतपाल, लवली टॉकिंग टू यू. बाय,
3: टेक केयर, बाय.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: My favorite season, favorite time of the year is here. The festive season has begun and it is going to start with Ganesh Chaturthi. This is going to be my sixth year in the UAE to bring Ganpati home. And meri tarah agar aap bhi shopping करने की सोच रहे हैं, आई थिंक करनी होगी, 14 से गणेश चतुर्थी है, तो मैं तो इस वीकेंड जाने वाली हूँ द मेगा झील गणेश चतुर्थी फेस्टिव शॉपिंग एग्जीबिशन. एवरीथिंग आई नीड आई गेट इट हियर. दिस इज देयर सीजन 5. इट इज प्रेजेंटेड बाय मिश ब्रोज एडवर्टाइजिंग एंड इवेंट्स. 5th सितंबर को सुबह 10 से रात 10 बजे तक एट डबल ट्री बाय हिल्टन मनकूल इन दुबई. एंड यू कैन शॉप फॉर फैशन, अपने देसी आउटफिट्स आपको यहां मिलेंगे. देयर इज ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, फेस्टिव एसेंशियल्स, लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट and activities. ढोल ताशा होगा, लकी ड्रॉ है, बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज है, बहुत मस्ती होने वाली है. सपोर्टेड बाय मुकवानो टी दैट कनेक्ट्स, श्री अग्रवाल स्वीट्स, प्रीमियम इंदौर स्वीट्स एंड साथ में एंटरटेनमेंट पार्टनर्स डीसी प्रोडक्शंस, एमराइज टीन कनेक्ट, झील गणेश चतुर्थी एग्जीबिशन सीजन 5, शॉपिंग मीट सेलिब्रेशन. डोंट फॉरगेट 5th ऑफ सितंबर को डबल ट्री बाय हिल्टन पे सुबह 10 से रात 10 बजे मनकूल में. आई एम डेफिनेटली गोइंग देयर. आई गो हियर एवरी ईयर टू शॉप फॉर द अपकमिंग फेस्टिव सीजन एंड स्पेशली फॉर गणेश चतुर्थी.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, दिस इज द बिग थ्रिल. मैं हूं मानसी. मेरा जाने का टाइम, बट काम की बात बता के जाती हूं. इट्स बैक टू स्कूल सीजन एंड इट्स टाइम टू पावर अप फॉर AI एम्पलीफाइड लर्निंग एट शराफ डीजी. यू कैन शॉप फॉर लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड गेट अ चांस टू विन योर परचेज बैक अप टू 5000 दिरहम्स विद यू बाय वीपे प्लस. स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंजॉय करेंगे एक्सक्लूसिव 5% डिस्काउंट. सो हेड टू शराफ डीजी शोरूम्स फॉर द बेस्ट बैक टू स्कूल डील्स इन टाउन एंड हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज for all the updates and of course a chance for you to win some fantastic prizes. 106.2 Big FM it is. If you don't follow us, do it right away. Aap wahan pe bhi bahut sare invites plus a chance to win the check-in trip to Germany jeet sakte hain. You can say hi to me. I'm Mansi talking. I will be talking to you tomorrow. 5 to 9 is when I keep you company. Leaving you with one of my favorites in a movie that I can't wait. Matlab series ki to main fan hoon hi. The Mirzapur Universe ki jo movie release hone wali hai, uska pehla gana is right here.

0: पानी मदहोश किए जा मुझे तो कोई खींचे तेरी ओ
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल brought to you by insurancemarket.ae for the best insurance deals in the UAE call 800 alfred 247 big 106.2 the beat of bollywood

0: beat of Bollywood. The Big Jail, brought to you by InsuranceMarket.ae.
1: InsuranceMarket.ae.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo, खुश हुआ
3: निखिल को, जिन्होंने जब फोन उठाया तो पीछे से आवाजें आ रही थी. मैंने बोला निखिल मम्मी डांट रही है क्या, तो निखिल ने कहा नहीं बीवी है ना निखिल. तो बीवी क्यों डांट रही है?
4: अरे नहीं.
3: अच्छा नहीं डांट रही है,
4: लेट आया था ऑफिस से.
3: अच्छा इसलिए डांट रही थी,
4: कोशिश कर रहा था, इतने में आपको कॉल आ गया.
3: बहुत बहुत सॉलिड डांट पड़ रही थी बाय द वे निखिल को जब मैंने कॉल किया है. चलो निखिल मैं थोड़ा सा आपको मौका देती हूँ कि 4-5 दिन बीवी से दूर रहो. निखिल जर्मनी गए आप पहले?
4: नहीं.
3: निखिल आपको हम दे रहे हैं मौका शॉर्टलिस्ट होने का फॉर दिस अमेजिंग ट्रिप टू जर्मनी. वेरी वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन एंड देन प्ले अ डायलॉग. आपने बस गेस करना है कि वो डायलॉग किस मूवी से था. ठीक है?
4: ओके.
5: मोहब्बत क्या होती है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जारा के लिए दिल से एक दुआ जरूर निकलती है. किसकी आंखों में कभी आंसू ना आए.
3: बिल्कुल सही जवाब. बट निखिल मुझे एक बात तो बताना कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्या होगा?
4: आप तो सीधा ही मेरी जर्मनी में वहीं पे पिटाई चालू हो गई.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. No rush. No noise. Just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. सॉफ्ट रिदम्स, स्लो वाइब्स एंड सॉन्ग्स दैट हग यू बैक. यू आर इन द बिग चिल जोन ऑन बिग 106.2. ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae.

0: Lo-Fi and Night Feels. Your soundtracks to unwind. Only on The Big Chill. On Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
3: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इन टू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: कैच द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे फ्रॉम 3 to 6 PM विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.